0: कृष्ण हरे जय। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाची वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और

0: सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
1: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
2: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गाँवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गाँवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़ खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशी हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है।

0: इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टनचावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
1: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच 7:00 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रच्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आएं देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5,00,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई, चीखते

0: लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट इन वैलिडिक्टरी सेशन ऑफ डिपार्टमेंटल समिट ऑन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली टुडे। गवर्नमेंट कैप्स ट्रेड मार्जिन्स ऑन नॉन शेड्यूल्ड एंटी कैंसर ड्रग्स एट 30% ऑफ MRP। Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day departmental summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. More from our correspondent.
3: It is second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities and accelerate outcomes through closer centre-state collaboration. The summit is focusing on 4 key themes including nutrition, early education, child protection, women's safety and empowerment. The departmental summit model is bringing together stakeholders from the union and state governments to deliberate on sectoral priorities, share good practices, address implementation challenges and agree on time-bound actions for improved governance and service delivery. With Priya Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs, limiting them to 30% of the maximum retail price or MRP, a report.
4: The Ministry of Chemicals and Fertilizers expects this measure to reduce medicine prices by up to 70%, helping cancer patients save 2,500 crore annually. While essential cancer medicines on the scheduled list are already subject to strict government-set ceiling prices, this new decision extends price protection to non-scheduled cancer medicines by limiting their margins. Once an expert committee under the Directorate General of Health Services finalizes a list of medicines to be covered, the National Pharmaceutical Pricing Authority, NPPA, will issue issued the official notification. Cancer incidence is rising in India, affecting about 60 people per lakh population. Treatment places a heavy financial burden on patients and their families, who often pay substantial amounts from their own pockets. The ministry stated that the new cap will curb excessive profiteering, address unfair

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: नमस्कार, मैं हूँ आरजे अवनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर जी का 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की आयु में गोवा स्थित उनके आवास पर कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। हम उन्हें मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पुणे ग्रामीण में पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ। हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति, और ये जो गाना है हम उनको डेडिकेट करना चाहेंगे।

ऐ मेरे मन तू करना ऐसे कर्म कि ऐसे दिग्गज लोग जब चले जाते हैं तो मतलब हमें लगता है कि कैसे मतलब इतनी जल्दी चले गए, इतने जल्दी चले गए। भारतीय सिनेमा के एक कहते हैं अमर स्तंभ और असाधारण अभिनेता नाना पाटेकर जी के आकस्मिक निधन से भारतीय कला जगत को अपूरणीय क्षति हुई। उनके बेबाक अंदाज, दमदार संवाद, अदायगी और समाज सेवा के जज्बे को हमेशा याद रखा जाएगा। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार तथा प्रशंसकों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। दिल से श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं एफएम रेनबो की ओर से, उनके चाहने वालों की ओर से। ओम शांति। और हमारे जो लिसनर्स हैं उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कि राकेश माथुर जी हैं, रजनीकांत पाटिल जी हैं, पंकज महोद है, अंजू जी अंधेरी से हैं, महेश भाड़कर जी हैं, प्रमोद चिंचोलकर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। रंजन जी हैं झारखंड से, और ओजस्वी भी हैं हमारे साथ, विजेंद्र घाटोल जी हैं, बहुत सारे अपने लिसनर्स हैं। थैंक यू सो मच। बस हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जब भी याद करते हैं तो अंकुश है, क्रांतिवीर है, और कुछ ऐसे फिल्म जिसमें उनको कुछ डायलॉग भी उन्होंने बोले नहीं है लेकिन उनके सिर्फ एक्सप्रेशंस जो है वो बहुत कुछ कह जाते हैं। ऐसी एक फिल्म आई थी, वो आप सबको याद ही होगा, जैसे याद करते क्रांतिवीर फिल्म, तो उसमें एज एन एक्टर वो थे और साथ में मनीषा कोइराला थी। तो वैसे ही एक फिल्म और आई थी जिसमें मनीषा कोइराला उनकी डॉटर के रूप में थी। बहुत ही अच्छी फिल्म थी ये, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। उसी फिल्म का गाना जो है वो हम इनको डेडिकेट करना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर सी फिल्म खामोशी द म्यूज़िकल। हमारे लिसनर्स कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं, स्मिता पालकर जी हैं,

0: और विक्रम आठवले, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एंड चलिए सुनते हैं ये गाना अलका याग्निक और हरिहरन जी की आवाज़ में। जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि आरजे अवनी भट्ट के साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो।
1: मैं एनी, मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है। मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज़ और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं। है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना।
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन बनाए समृद्ध।

नमस्कार, 9:07 होने को है और हमारे दूसरे लिसनर्स जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्रणव शिंदे हैं, स्मिता पालकर, प्रमोद छिंचोलकर, विजेंद्र घाटोल, फिरोज़ सिकनपुरिया जी, एंड एक और मैसेज भी आया है रितेश शेट्टी मलार से, जयेश भट्ट, आप सभी का हम अभिवादन करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, आपकी चाय जो है वो भी हमें पहुंच गई है, अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ भी है, आप जब ट्रेन में आते हो ना, तो आपके साथ जो फ्रेंड्स होते हैं तो उनके साथ भी कुछ बातें होती हैं, जैसे उनको भी पता है कि हम जब मॉर्निंग में साथ में होते हैं तो कुछ फिटनेस के बारे में बात करते हैं। आज एक मेरे फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, जो टीचर है, और वो मुझे रास्ते में ही पूछ रहे थे कि नाना पाटेकर जी तो बहुत ही फिट थे, जिम में एक्सरसाइज करते थे, तो कभी कभी हमें लगता है कि ये सब करने का क्या फ़ायदा। मतलब मैंने नहीं बोला, उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने कहा कब कौन आएगा कब कौन जाएगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने शरीर का ध्यान ही ना रखें। उनके साथ क्या हुआ होगा उस समय, क्या तकलीफ़ हुई होगी, वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने जो किया है, उनका जो काम है, उन्होंने जो इतनी अच्छी एक्टिंग, अदायगी जो उनकी थी फिल्मों में, वो हमें आज भी याद आती है। कभी कुछ सीन ऐसे हैं जो हमें हंसा देते थे, तो कभी कुछ सीन याद करके हमें रुला देते हैं, है ना, आपको भी ये चीज़ याद आती होगी। लेकिन वो फिट थे, वो एक्सरसाइज करते थे, उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हमें भी यही करना है। बाकी ये तो मृत्यु लोक है, आना और जाना जो कहते हैं ना, कि वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन दुख ज़रूर होता है। ऑब्वियसली बहुत अच्छे लोग चले जाते हैं तो दुख ज़रूर होता है, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया भी है कि काम करो। कुछ वीडियोस भी आपने उनके देखे होंगे सोशल मीडिया पे, तो वो इतने अच्छे मैसेज देके जाते हैं कि भाई काम करो। मेरे पास शब्द नहीं है कि उनके लिए आपको क्या बताऊं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। एक बार फिर हम सब की ओर से नाना पाटेकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि।

समर्पित करते हैं। और एक प्यारा सा गाना है जो अलका याग्निक की आवाज़ में है, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और हाँ, विश्वास चांदोरकर जी भी हमारे साथ हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, वैसे तो योगा इसमें मैं भूल ही गई कि आपने आज एक्सरसाइज की थी या नहीं, ये भी मुझे बताइए। और कभी कभी हम जब योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बीच में हम थोड़ी सी आइज़ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। यानी कि जैसे कि आज मैं आपको बताने वाली थी त्राटक के बारे में, तो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर ही, मतलब आपके एग्जिट सामने, आप एक पॉइंट जो है वो उसे ढूंढ लीजिए और फिर वहाँ पे ही आपको पलक भी झपकना नहीं है और आपको सिर्फ देखना है जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपको करना ही है, लेकिन ये आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। आप मुझे बताइए कि आप त्राटक करते हैं कि नहीं, या तो आई एक्सरसाइज कभी करते हैं कि नहीं, ये ज़रूर बताइए मुझे। तब तक के लिए हम अलका जी की आवाज़ में एक गाना सुनना चाहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि अवनी के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

आपके मैसेजेस भी हमें आ रहे हैं और अभी अपना प्रोग्राम चल रहा है मस्त मुंबई, जिनमें हमें यशवंत आड़मुड़े जी ने बताया कि नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी, आप ऋषिकासन और सिंहासन नियमित करते हैं। ये सिंहासन मैंने भी किया है और ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार तो करती हूँ, जिसमें आपकी जो जीवा है उसको आपको बाहर निकालना है और आवाज़ करनी है सिंह की तरह। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मांसपेशियाँ या मसल्स हैं जो फेस के खास करके हैं वो खींचते हैं और वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचता है, वहाँ तक रक्त पहुँचता है और ख़ास करके कुछ जो प्राणायाम है वो तो आँख के लिए बहुत अच्छे हैं, अनुलोम विलोम है वो आँख के लिए सबसे बेस्ट आसन है, फिर भ्रामरी है वो भी बेस्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको छोड़नी नहीं है। हो सकता है कि 2 दिन के बाद नवरात्रि शुरू होगी तो उसमें तो आपकी एक्सरसाइज हो ही, मतलब हो ही गई होगी या तो हो जाती होगी। तो मेरे साथ भी ऐसा है कि जब नवरात्रि खेलने जाते हैं तो एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर आप नहीं खेलते गरबा तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करना, उसको छोड़ना मत। हाँ, अगर थक गए हैं या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर कंपलसरी नहीं करना है, लेकिन आपको करना ज़रूर है। स्मिता पालकर जी भी हमें कुछ बता रही है। स्मिता पालकर जी बता रही है, हमारे आज भी सुपर वॉकिंग 40 मिनट किया, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की और 10 मिनट्स मेडिटेशन किया। वेरी गुड स्मिता जी। और आपने बताया कि त्राटक आई एक्सरसाइज हम करते हैं, सकलिंग करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोटेशंस ऑफ आई बॉल करते हैं, वेरी नाइस। एंड हम जिन्हें जो डबल विजन है उनके लिए भी त्राटक आई एक्सरसाइज है वो फ़ायदेमंद है, तो त्राटक करना चाहिए रोज़। सब एक्सरसाइज में हमें होता है कि ये करें, रोज़ क्या करें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सूर्य नमस्कार है, वो आप कर लेंगे तो उसमें आपको सब कुछ आ जाएगा। यानी कि आप अगर 12 कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट, उससे ज़्यादा भी कुछ लोग करते हैं, 25-50 तक भी पहुँचते, लेकिन वो मैं एडवाइस नहीं दूंगी। आपको करने हैं, जितना आप कर सकते हो उतनी एक्सरसाइज आप ज़रूर करो। श्रीधर मुराजकर जी भी हमारे साथ है, एसपी जी, सुनील पांचाल जी भी हमारे साथ है, पंकज मौर जी है, दत्ता केदार पंढरपुर से हमारे साथ है, आप वहाँ से हमें सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। गणेश पाटिल जी भी है, रजनीकांत पाटिल जी है, राकेश माथुर जी है, सबको मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं दे पा रही, लेकिन आपके मैसेजेस पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। चलिए एक और गाना प्यारा सा सुनते हैं, पापोन की आवाज़ में, पता चल ही गया होगा कि बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, मोह मोह के धागे। जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि आरजे अवनी के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो।

मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर पूरा सप्ताह मनाया जाता है और मुख्य उद्देश्य है कि जागरूकता बढ़ाना, रोजमर्रा के जीवन और व्यवसायों में डाक के महत्व को समझना। आज के इस डिजिटल दौर में आपको सुबह उठते ही सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन हम चेक करते हैं कि क्या हुआ, किसका मैसेज आया। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि हम एक वेट करते थे कि कोई चिट्ठी आएगी और ज़्यादातर अच्छे वाले मैसेज आए तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही आज का जो दिन है वो हमें याद दिलाता है उस ज़माने की जब लोग डाकिया भैया की साइकिल की घंटी का इंतज़ार करते थे। ये मैंने तो सुना है, लेकिन आपने सुना है कि नहीं वो मुझे ज़रूर बताइए। और हमारे जो एक हमारा बहुत अच्छा मैसेज भी आया है प्रकाश शिंदे जी की ओर से, मैं एक गाना प्ले करती हूँ और फिर उनका मैसेज पढ़ते हैं। तो बहुत ही सुंदर गाना किशोर कुमार की आवाज़ में हम आज के दिन, मतलब ये मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। और आप ये भी मुझे बताइए कि आपने कभी किसी को खत लिखा था या तो है, या कभी किसी के खत का इंतज़ार किया है, ये बात ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हम ये गाना सुनते हैं।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू

वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आज जागतिक टपाल दिन यानी कि डाक दिन भी है, और कुछ अच्छा भी थोड़ा सा नहीं लग रहा, लेकिन आपने हमें मैसेज भेजा कि मैंने पूछा था कि भाई आपने कभी पत्र लिखा है या तो आप किसी के लेटर का इंतज़ार करते हैं, तो आपके मैसेजेस भी मुझे आए हैं। जैसे कि प्रणव शिंदे जी ने बताया कि हे ईश्वर, हे विधाता, आज बहुत भारी मन से आपको ये खत लिख रहा हूँ कि कल सुबह जब ये खबर मिली कि हमारे चहेते कलाकार नाना पाटेकर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो दिल टूट गया। समझ में नहीं आ रहा कि आपसे क्या कहूँ, बस मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है, आपने नाना जी को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया, ये हमें भी फील हो रहा है। वे सिर्फ बेमिसाल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सच्चे, बेबाक और संवेदनशील इंसान भी थे, और जिन्होंने हमेशा अपनी कला के जरिए आम आदमी के संघर्ष और सामाजिक मुद्दों को आवाज़ दी। ये आपने बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि फिल्म तो हम बहुत सारी देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी देखते हैं, लेकिन इनकी जो फिल्में थी उनमें सामाजिक जो बाबत है, बात है, उस पर बहुत ही गौर से ध्यान दिया गया था। अभी तो कहते हैं ना कि वो बेबाक और संवेदनशील इंसान भी थे, जिन्होंने हमेशा अपनी कला के जरिए आम आदमी के संघर्ष और सामाजिक मुद्दों को आवाज़ दी। उनकी आवाज़ की वो कड़क, उनका सीधा साधा जीवन और दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहने वाला उनका जो निस्वार्थ स्वभाव है, वो हम सब के दिलों में आज भी बसा है। हे ऊपर वाले, माना कि जिंदगी और मौत का फैसला आपके हाथ में है, लेकिन उनका इस तरह से अचानक चले जाना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। आप भले ही हमसे दूर चले गए हो, लेकिन अपनी फिल्मों, अपने विचारों और अपनी सादगी के जरिए आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बहुत ही अच्छा लिखा है, और आपने अपनी जो भावना है वो हम सब की ओर से यहाँ पर डाली है। उस बात को क्या कहें आपको, लता जी की आवाज़ में हम उन्हें ये गाना, उनको याद करते हैं, डेडिकेट करेंगे।

9:42 होने को है और आप सब हमारे साथ जुड़े हैं मस्त मुंबई कार्यक्रम में। आप सबके मैसेजेस भी आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे डॉक्टर अंजू जी ने बताया कि हमने जो पोस्ट की बात की थी कि आपने कभी किसी को पोस्ट किया है या क्या मतलब, तो उन्होंने मैंने लिखा है कि मैंने सबसे ज़्यादा लेटर्स अपने हस्बैंड को लिखे हैं क्योंकि उनकी मतलब बदली होती रहती थी और कभी भोपाल तो कभी गुवाहाटी और कभी लखनऊ। आहा क्या कितना अच्छा लगता होगा ना कि आप लेटर लिखते थे और फिर एक महीने के बाद शायद मिलते होंगे, दो महीने के बाद मिलते होंगे आपको, और उन तक मैसेज पहुंचने के बाद मतलब लेटर पहुंचने के बाद उनका लेटर आता होगा आई एम श्योर, तो कितना अच्छा लगता होगा। सिर्फ ये हम बयां नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, आप जो बातें हैं वो याद कर रहे हैं। चेतन कुमार जी हमारे साथ है मानपुर बाज़ार गया बिहार से, थैंक यू सर। प्रमोद चिंचोलकर जी भी हमें कुछ बता रहे हैं कि उन्हीं दीदी हम पहले खत लिखते थे, वो भी अकोला आकाशवाणी केंद्र पर बहुत सारे खत लिखे, वो हमने भी सुने हैं जब छोटे थे तो विविध भारती में लेटर्स आते थे। अभी तो ऑनलाइन कार्यक्रम चालू हो मतलब होते हैं इसलिए खत नहीं, लेकिन हमारी तो ऐसे ही तुरंत बात हो जाती है, टेक्निकल हम इतने अपग्रेड हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच। खत नहीं, अभी तो आमने सामने जैसा ही है। दत्ता जी हैं, दत्ता केदार पंडरपुर से, और वो मैसेज करें कि हर रोज़ अच्छा हमारी ये बातें तो है ही यहाँ कि आपने क्या एक्सरसाइज की, वो किसी के मैसेज बाकी जैसे वो बता रहे हैं कि हर रोज़ 3 किलोमीटर चलते हैं और बाद में योगा ज़रूर करते हैं। वेरी गुड, मतलब 3 किलोमीटर बहुत अच्छी बात है, आप मैराथन में भी जा सकते हैं सर। कलाकार के साथ नाना जी के बारे में बता रहे हैं कि वे एक अच्छे इंसान भी थे जिनके लिए शब्द कम पड़ते हैं, वेरी वेरी वेरी ट्रू। और रंजन जी हैं झारखंड से हमारे साथ, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की साइकिल की घंटी तीव्र वाली होती थी और घंटी की आवाज़ सुनते ही पापा आ गए ऐसे बोला करते थे, डाकिया डाक लाया साइकिल की घंटी, वो सब चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि वो बोलने वाली बात नहीं है, एक महसूस किया जाता है जिन्होंने मतलब जो लोग वो समय से वो दौर से गुजरे होंगे उनको पता चला होगा। आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल के नहीं कह सकती लेकिन आज के जो अपने प्यारे बच्चे हैं वो शायद उन्होंने मिस किया है ये चीज़ें। लेकिन आप सबके मैसेजेस आए और भी मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, लेकिन सबकी बातें करेंगे तो हमारा प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। एक और प्यारा सा गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना।
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।

आज है 9 अक्टूबर और आज के दिन के बर्थडेज के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। और आज जन्मतिथि है राजा लक्ष्मण जी की। हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका जन्म हुआ था 1826 9 अक्टूबर को और 1877 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि, साहित्यकार तथा उड़ीसा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जी का भी आज जन्म हुआ। और 1945 में आज जन्म हुआ प्रख्यात प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान साहब का, जिनके गाने तो आपने सुने होंगे लेकिन कहीं कहीं आपने उनके जो कहीं कहीं क्या मतलब उनके प्रोग्राम्स पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं। बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध सितार सरोद वादक है, सितार नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अभी मैं आपको एक गाना सुनाने जा रही हूँ जिसमें हल्का सा एक टुकड़ा है जो सितार और सरोद का है, तो ये गाने में शायद आपका ध्यान गया हो तो, और हम उन्हें बर्थडे विश करना चाहेंगे। प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान साहब को आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे और हम सब की ओर से आपको जन्मदिन की शुभेच्छाएं देते हैं। एक गाना है जो मैंने अभी आपको बताया कि सितार और सरोद का इस एक टुकड़ा है इस गाने में।

0: घेऊन जाण्याचा.
1: श्रोतेहो, अज्ञात मुंबई या कार्यक्रमामध्ये मंदार परांजपे आणि नंदिता पाटकर राणीच्या बागेतल्या प्राणीसंग्रहालयाची गोष्ट सांगणार आहेत. अवश्य ऐका 8 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान सकाळी 7:45 एफ एम रेनबो आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर. याशिवाय न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर दोन्ही वेळेला.
2: नमस्कार, अभी के मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे. कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं. समाचार में आगे, सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है. ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी. दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार कल पुणे के डोंजे स्थित उनके फार्म हाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. अंतिम संस्कार से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. समाचार के अंत में, क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 2020 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा. पहला मैच जीतकर भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है. अभी के मुख्य समाचार यहां पर समाप्त हुए. धन्यवाद.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो गाना हमने सुना अंखियों के जरूखों से, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ही आपको बता देती हूं कि भारतवर्ष की धरती पर एक ऐसे संगीतकार और गीतकार का जन्म हुआ जो शरीर की आंखों से नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मन की आंखों से जो कुछ देखा और दिखाया वो आंख वाले भी कम ही देख पाते हैं। हम बात कर रहे हैं संगीतकार रविंद्र जैन जी की, जिनके गीतों के बिना रामानंद सागर की रामायण भी अधूरी है। रविंद्र जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को जिला अलीगढ़ के मोहल्ला कानवरीगंज में हुआ था और वो जन्म से ही देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी मन की आंखों से कोई रंग जो है वो अछूता नहीं रहा। आज उनकी पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है FM रेनबो, और हम सब उनके चाहने वालों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सादर नमन करते हैं। आप सबके मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं। प्रणव शिंदे जी, असुरों का वो संगम वो साज याद आ गए, बाबा दादर से पंकज मोहन जी, संगीतकार रविंद्र जैन की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि। प्रमोद चिंजोलकर जी भी मैसेज भेज रहे हैं अकोला से, और कृष्णा पाक दिल्ली से, सुखविंदर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मो फमान जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं जी। वो बोल रहे, वैसे तो अभी फरमाइश का सेशन नहीं है, लेकिन ये सब गाने इतने ही सुंदर हैं कि हम कहना चाहेंगे कि हम सब के पसंदीदा गायक के संगीतकार के जो गाने हैं वो हम प्ले कर रहे हैं। और मैसेजेस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्लीज़ कोई भी गीत में हमें शामिल कीजिए। पांडर कौड़ा से अनिल बुरांडे है, उषा बुरांडे है, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे।

0: सन्डे आप सभी का स्वागत है। आप वैसे होता है कि कभी कभी इतने सारे मैसेजेस हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपका जो प्यार है वो हमारे और मतलब हम तक पहुंच गया है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद रविंद्र जैन जी के गाने हम प्ले करने जा रहे हैं और आज का अभी का जो प्रोग्राम है नमस्ते भारत का वो हम उन्हें समर्पित करेंगे।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

तू जो मेरे सुर में क्या गाने बनाए हैं, उन्होंने ही गाने लिखे थे। काफ़ी सारे ऐसे गाने जो है वो उन्होंने गाए भी है, और ऑब्वियसली म्यूज़िक कंपोज तो उन्हीं का है हम बात कर रहे हैं। जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है उनको बता दूं कि नमस्ते भारत प्रोग्राम चल रहा है और हम बात कर रहे हैं रविंद्र जैन जी के बारे में, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। रविंद्र जैन, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतवर्ष की धरती पर एक ऐसे संगीतकार और गीतकार भी कहेंगे, और रामायण जब हम याद करते हैं तो उनके जो कुछ पद हैं या टाइटल सॉन्ग है वो हमें ऑब्वियसली याद आता है, वो आवाज़ याद आती है। तो ऐसी ही कुछ और बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे एक गाना याद आया जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है उनको बता दूं कि प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते भारत, 10:32 होने को है और हम बात कर रहे हैं रविंद्र जैन जी के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म सौदागर से की और इस फिल्म के लिए उन्होंने गीत लिखे भी और संगीतबद्ध भी किया। रविंद्र जैन ने फिल्मों के लिए दर्जनों होली के गीत भी लिखे और उन्हें संगीतबद्ध भी किया। रविंद्र जैन जी ने फिल्म खून खराबा के गीत होली आई रे, गोपाल कृष्ण फिल्म में आयो फागुन हठीलो, गोरी वाली गोरी चलो पे पिलो रंग डारन दे, फिल्म षड्यंत्र में होली आई होली, हाँ मस्तानों की टोली, सब के लबों पे प्यार भरी बोली जैसे गीत गाए गए और इतने सुंदर गीत हैं। और कुछ मैं अभी गाना जब प्ले कर रही थी तो वही सोच रही थी कि उन्होंने जो गाने कंपोज तो किए हैं लेकिन साथ में जो म्यूज़िक अरेंज किया है और इंस्ट्रूमेंट जो है वर्सेटाइल है। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि अच्छा ये राग पे ही रविंद्र जैन जी गीत बनाते हैं, गाने बनाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक अलग अलग वर्सेटाइल म्यूज़िक दिखेगा, इंस्ट्रूमेंट भी कहीं पे सितार दिखता है तो कहीं पे वायलिन से, स्ट्रिंग सेक्शन भी उनका इतना अच्छा। तो हमारे एक मित्र हैं, उनको मैंने एक बार पूछा था, मतलब वे उनके साथ काम कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो हर चीज़ हर मतलब उस पर ध्यान देते हैं, अरेंजमेंट है तो कौन सा किसको बुलाना है साथ में, और तबला रिदम भी आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छी रिदम, तबला ढोलक इतना अच्छा प्ले हो रहा है। तो ज़्यादा बात करूँगी नहीं, लेकिन आपको एक लता जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना है और रविंद्र जैन जी का संगीत है, ये गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल।

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन बनाए समृद्ध।

हेलो। भविष्य की भविष्यवाणी जो है वो करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसका खुद निर्माण करना। और ये बात किसने कही थी वो आपको मुझे बताना है। सफलता को कभी अपने सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को कभी अपने दिल पर मत बढ़ने दो। आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। ये बात कही थी रतन टाटा जी ने। आज

रतन टाटा जी कि ये अनमोल और प्रेरणादायक जो विचार है वो आज भी हमें काम आते हैं। रतन टाटा के बारे में आपको बताना चाहूंगी, आज है 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हुआ और आज उनकी पुण्यतिथि है। एफएम रेनबो और हम सबकी ओर से उन्हें प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा एवं नैतिकता को भी प्राथमिकता दी। उनको पद्म भूषण 2000 में और 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। एक बार फिर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सादर नमन करते हैं। और हम जिन्होंने ट्यून किया है उनको भी बता दूं कि हम आज बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार, लीजेंडरी म्यूजिक कंपोजर रविंद्र जैन साहब को भी याद कर रहे हैं और उन्हीं का एक बहुत ही प्यारा सा गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल।

सुन साहिबा सुन, बहुत से ऐसे जो कहते हैं ना गाने हैं वो हमें सुनने हैं लेकिन हमारे पास समय इतना नहीं है। रविंद्र जैन जी के गीतों में उनकी भक्ति भी झलक मिलती है, वो भी आपको बताया था कि जैसे रामानंद सागर की रामायण में मंगल भवन अमंगल हारी भजन को भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी। इस भजन के अलावा उन्होंने रामायण की लगभग सभी चौपाइयाँ जो है वो भजन भी उन्होंने ही गाए, और कहा जाता है कि जब भगवान राम के वनवास जा रहे थे तब उन्हें 5 भजन बनाने को कह गए। उन्होंने कहा मत जाओ राम अयोध्या छोड़ के मत जाओ को महज 5 मिनट में ही बनाया था। आज ही के दिन 9 अक्टूबर को रविंद्र जैन जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज ही के दिन अलविदा मतलब उन्होंने कहा था हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे, सादर नमन करना चाहेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है वो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे साथ है आरजे रोशनी भी। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब चलने का वक्त हो गया है, और मैं आपकी होस्टिंग दोस्त आरजे अवनी लेती हूँ आपसे विदा। देखते रहिए जिंदगी के खूबसूरत नज़ारे। बातों का सिलसिला यहीं थमता है, फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय, एंड अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं और नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व

महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। और समाचारों के अंत में, आज विश्व डाक दिवस है। इस अवसर पर मुंबई में विश्व डाक दिवस एक डाक नेटवर्क असीम संभावनाएं विषय पर एक विशेष डाक मुहर जारी की जाएगी। महाराष्ट्र सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल श्री रामचंद्र के जय भाई कार्यक्रम का अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले कार्यक्रम के लिए बने रहो आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो सेवा पर। नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। मैं हूँ रोशनी। ब्रेक फ्री कार्यक्रम शुरू हुआ है। शुक्रवार में आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है। बाहर का हाल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी का है, लेकिन ऐसी एक दूसरे से बातें होने वाली है कि थोड़े से फुर्सत के पल, थोड़े से जो है हल्के फुल्के पल जो है आपको और मेरे नसीब ज़रूर आए। FM रेनबो पर गाने शुरू हो रहे हैं। आपकी और मेरी मुलाकात का वक्त भी शुरू हो गया है। 11 से 2 रोशनी आपके साथ रहेगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सुनते हैं आज का पहला गाना AR रहमान की आवाज़ में।

शुक्रवार है तो वीकेंड का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो बात ऐसी है कि हर कोई आज काम पर है। लेकिन मानो जब ऐसा कोई दिन मिल जाए जब हर कोई काम पर है, लेकिन हमारे पास एक दिन ऐसा मिल गया है जहाँ पर और कोई आसपास नहीं है, ना ही कोई काम है, बस हम और सिर्फ हम ही हैं अपने आप के साथ। ऐसे में क्या कुछ किया जाएगा, क्या क्या महसूस होगा, तो ये सारी बातें आज जो है आप और मैं मिलकर एक दूसरे के साथ करेंगे, कुछ प्यार भरे फुर्सत के पल साथ में बिताएंगे।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: कभी कुछ अचानक से फुर्सत के लम्हे मिल जाए तो दिल तो करता है कि और आसपास कोई ना हो, बस हम और थोड़ा सा वक्त साथ हो। लेकिन जब थोड़ा और वक्त वाकई जब बीत जाता है तब दिल कहता है कि अच्छा होता जो तुम साथ होते, अच्छा होता अगर तुम साथ होते तो शायद ये फुर्सत के पल और भी खास होते।

बस मैं और खाली घर इसी ख्याल के साथ जो है पार्टी के प्लान्स बन जाते हैं। लाउड म्यूजिक, पिज्जा, बहुत ज़्यादा शोरगुल, आज़ादी, ये ख्याल सबसे पहले आता है। लेकिन पार्टी का अंदाज जो होता है हर किसी का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। किसी के लिए ये सारी बातें जो है वो पार्टी होती है, तो किसी का अंदाज जो होता है बहुत ही अलग और सरल सीधा सा होता है। उनके लिए बस ये कहना होता है या फिर वो सोचते हैं कि इस फुर्सत के लम्हे में बस एक चीज़ मिल जाए, तो वो क्या है जान लेते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि फुर्सत ही महंगी है, फुर्सत ही महंगी है, वरना सुकून तो इतना सस्ता है कि चाय की प्याली में भी मिल जाता है।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले। कॉस्मोस कार लोन है ना?
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
2: मक शुरू करो या इन्वेस्टिंग सा धड़ा।

जब अकेले होते हैं और कुछ पल जो होते हैं अपने आप के लिए मिलते हैं, तब क्या कुछ होता है, तब याद आता है कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, इतने सारे लम्हे गुजर गए हैं, इतना कुछ ज़िंदगी में हो गया है, इन्हीं लम्हों में इसका एहसास होता है। उसी तरह प्रकाश शिंदे जो हमारे लिसनर हैं, उन्होंने भी कहा है कि जब इंसान अकेले होता है तो उसके मन में जो है ना विचारों का एक सैलाब आ जाता है।

और उसी खाली वक्त में सारी पुरानी यादें जो है वो दस्तक देने लगती है और कई बार यही खामोशियां चुभने भी लगती है। बात तो सही है, पार्टी शुरुआत में ही होती है, ये जो खालीपन होता है या फिर फुर्सत के पल जो होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अगर बिजी हो उसके बीच थोड़े पल मिल जाए तो सही लगते हैं। अगर ज़्यादा वक्त बस अपने आप में हो तो कई बार यही खामोशी चुभने लगती है। और आगे ऐसा भी वो कह रहे हैं, जब कोई नहीं होता हाले दिल सुनने के लिए तब खुद से ही बात करना अच्छा लगता है। यह अकेलापन भी अब एक सुकून सा देता है, कम से कम कोई झूठा दिलासा तो नहीं देता। अकेले चलना मुश्किल ज़रूर है इस राह पर, मगर ये सफ़र इंसान को खुद से मिला देता है। दिखावे की नज़दीकियों से ये तन्हाई लाख गुना अच्छी है, इसमें कोई फरेब नहीं, कम से कम ये तो सच्ची है। क्या बात है, बहुत सही बात है। थोड़ी चुपती भी है लेकिन इसी में सच्चाई भी छुपी है। वाह वाह, कितनी गहरी बात कर रहे हो। आपको भी कुछ ऐसे ही बातें करनी है तो ज़रूर थोड़ा सा वक्त अपने पास अभी भी है और कुछ फुर्सत के जो लम्हे आप और मैं अपने आप एक दूसरे को सहारा देते हुए अकेले बिता रहे हैं, और ऐसे ही दिल की बातें ज़रूर चलती रहेंगी। बने रहो 107.1 पर जो है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

जब अकेलेपन की बात भी हो रही है तो संजय दर्शन जो है उन्होंने बहुत सही बात कही है कि जब हम मर्जी से एकांत चुनते हैं तब उसे सॉलिट्यूड या फिर एकांत ऐसा कहा जाता है, लेकिन जब मजबूरी में अकेले होते हैं तब उसे खालीपन कहा जाता है, अकेलापन कहा जाता है, लोनलीनेस ये होता है। तो अपने साथ वक्त बिताना जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर कुछ हालात ऐसे हो गए हैं इससे जो हमारे हाले दिल को जो है बया करता है। लेकिन मान लो शुक्रवार का दिन है, हर कोई काम पर है, लेकिन आपको ऐसा कोई दिन मिल रहा है जहाँ पर आसपास और कोई नहीं हो, बस आप ही हो और थोड़ा सा खाली वक्त, खाली घर, तो उस वक्त आपका हाल कैसा होगा?

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण

जब थोड़ा खाली सा वक्त मिला था, फुर्सत के लम्हे मिले थे, तो शुरुआत जो है पार्टी के साथ की गई थी। लेकिन जब पूरा दिन बिताते हैं बिना किसी ह्यूमन कनेक्शन के, तब उन्हीं लोगों के लिए फिर हम तरसने लगते हैं जो बड़े जोश के साथ दिन की शुरुआत की थी। अचानक हम अपनों को पुकारने लगते हैं। मुश्किल से एक ही दिन खाली सा मिला था, लेकिन वो

अकेले बिताने के बाद हमारे अपने कितने खास है और कितने ज़रूरी है इसका एहसास होता है। तो इसी बात पर और एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कितने महंगे हो चुके हैं आजकल ये फुर्सत के लम्हे, कितने महंगे हो चुके हैं आजकल ये फुर्सत के लम्हे, मिलता ही नहीं वक्त अपनों को अपनों के लिए। तो अपनों के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ अपनों के साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ज़िंदगी वो मौका नहीं देती है, इसलिए वो जो है मौका हमने खुद अपने आप के लिए ढूंढ निकालना है, तराशना है। तो ऐसे कुछ फुर्सत के लम्हे बहुत ही जल्द आपके हिस्से ज़रूर आए, लेकिन आपका और मेरा जो वक्त है और कुछ देर तक चलने वाला है। कुछ गाने जो है आपके लिए यहाँ पर प्ले कर रही हूँ। अगला गाना हम साथ साथ हैं, इस फिल्म का टाइटल ट्रैक।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। दोपहर के ठीक 12 बज रहे हैं और अब जानते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कल खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 21 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए और 8020 लीटर घटिया पैकेज पेयजल जब्त किया। मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित बरस्ता कॉफी आउटलेट पर गंदे जंग लगे रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, खुले खाद्य पदार्थ, शाकाहारी मांसाहारी वस्तुओं को अलग न रखने और जरूरी जांच और कर्मचारी रिकॉर्ड न होने पर कार्यवाही हुई। कर्मचारियों की स्वच्छता में भी कमी मिली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने शुक्रवार को कहा कि इसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड कार्यक्रम पर की गई कार्यवाही से अपनी कार्यबल रणनीति या ग्राहकों के साथ कामकाज पर असर पड़ने की आशंका नहीं है। कंपनी ने कहा कि इसे मुख्य वजह यह है कि पिछले 2 वर्ष में इस कार्यक्रम के तहत उसके आवेदन की संख्या इकाई अंक में रही है, साथ ही उसका ध्यान स्थानीय लोगों को नौकरी देने पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर

हैं। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट पर बातचीत करेंगे। और समाचारों के अंत में, विश्व बैंक का अनुमान है कि इस साल अगस्त में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से 1.66 अरब अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ। इस कुल नुकसान में आधारभूत ढांचे का हिस्सा 83%, रिहायशी इमारतों का 11% और गैर रिहायशी इमारतों का 6% था। इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है।

जब कभी अपने आप को तोहफा देने का दिल करता है, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस अपने आप जो है 90s के गाने सुनने लगती हूँ, जो तोहफा है अपने आप मुझे मिल जाता है।

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन बनाए समृद्ध।

कीमती तोहफे तो कीमती तोहफे तो अजनबियों को दिए जाते हैं, कीमती तोहफे तो अजनबियों को दिए जाते हैं, इश्क में अक्सर दिल के नजराने दिए जाते हैं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और इसी के साथ आज का म्यूजिक कैफे कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। अब कुछ ही पलों में यानी दोपहर के ठीक 12:30 पर हम सुनेंगे प्रायोगिक कार्यक्रम NCERT उमंग। तो बने रहो 107.1 पर जो है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
2: जी।
3: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताजा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
2: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ पांची के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने

0: परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं।
0: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
0: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
0: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
1: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
0: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क्कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
1: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
0: जी बिल्कुल, श्रोताओं जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
1: विमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है।
0: जी।
1: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं।
0: जी, यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं, बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
0: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
1: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
0: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
1: जी जरूर, हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
0: जी, तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
1: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
0: जी,
1: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
0: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
1: श्रोताओं, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
0: आपने कहा वाग देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
1: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
0: जी,
1: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
0: तो श्रोताओ, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओ, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
0: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
1: जी हाँ बिल्कुल, तो आइए श्रोताओ, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
0: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं,

0: बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, श्रोताओं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
0: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
1: सीखो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
1: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना
1: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्धवीर के होठों से निकले हैं जिसने देश

0: की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ,
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोल देना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं, और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है।

0: लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहाल।
1: सत श्री अकाल।
2: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
3: तेजा सिंह और चाट बना दे यार, सवेर होगी।
4: साहब

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के तहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र

0: दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
0: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
4: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
3: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
5: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
2: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
6: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
2: कुसुमलता,
6: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
6: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आपने सुना खास कार्यक्रम उमंग और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। ठीक 1 बजे हम सुनेंगे आकाशवाणी के छत्रपति संभाजी नगर से मराठी समाचार। तो बने रहो 107.1 जो है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर मैं रोशनी आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। हिट एंड हॉट शो शुरू हो गया है। यहाँ पर आपकी पसंद के गाने तो जरूर सुनते हैं और कई बार हम कोशिश करते हैं कि आपकी और मेरी पसंद ना कहीं आस पास की हो, इसलिए कोई एक थीम सोच लेते हैं या फिर सवाल जवाब के साथ जो है अपनी बातों को और अपनी पसंद को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा होता है ना, कभी कुछ नया होता है, कभी कुछ पुराना होता है, और दोनों जब साथ मिल जाता है तो कुछ कमाल ही हो जाता है। तो पहले दो घंटे में हमने थोड़ा सा हमारा जो पसंदीदा दौर है 90s का, उसके तरफ जो है हमने उसका मज़ा ले ही लिया है। तो क्यों ना ऐसा करें, बहुत वक्त हुआ है, काफ़ी अरसा बीत गया है कि कुछ नई चीज़ें जो है हमने उन्हें एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उसी तरह जो नए गाने हैं उन्हें भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, उन्हें भी एंजॉय कर लेते हैं। ऐसे कुछ नए गाने जो आप बहुत पसंद कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा गाना है नया है लेकिन इतना अच्छा है लेकिन आसपास कोई सुन नहीं रहा, तो आप ज़रूर उस गाने की फरमाइश मुझ तक पहुंचाना और आपकी पसंद जो है एफएम रेनबो के तमाम लिसनर्स साथ में जो है सुनेंगे। तो अपनी अपनी जो पसंद है जल्दी जल्दी व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक पहुँचाओ। तब तक मौसम का हाल बयां करने वाला गाना अरिजीत सिंह की आवाज़, फिल्म का नाम मेट्रो इन दिनों।

हिट एंड हॉट कार्यक्रम चल रहा है और हर कोई अपनी पसंद के गाने भेज रहा है। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो बता दूं, आज हिट एंड हॉट में ज़रूर आपके पसंद के गाने तो प्ले किए जाएंगे, लेकिन ऐसे गाने जो काफ़ी ताज़ा ताज़ा नए नए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 से 3 साल ही हुए हैं उस फिल्म को रिलीज़ हुए, और इतना नया नया गाना जो है आपको कोई पसंद है तो ज़रूर आप फ़ोन करके मैसेज करके अपनी पसंद मुझ तक पहुँचाओ। और ऐसे में आसाम से भी कुछ लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, हितेंद्र दास का मैसेज आया है, थैंक यू सो मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हिट एंड हॉट शो के लिए उन्होंने क्या लाइनें लिखी है। वैसे हमारे कई सारे लिसनर जो है काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी अपने खास अंदाज में कई सारी बातें हम तक पहुंचाते हैं। वैसे ही हितेंद्र का कहना है कि ये हिट एंड हॉट शो जहां बजते हैं गाने नॉन स्टॉप, ऐसा है शो ठंडी शाम को गर्म कर दे, ऐसा है अंदाज ब्रो, बजता है बीट, हिलता है फ्लोर, हर गाना है सुपर हिट का शोर, दिल बोले और तेज बजाओ, हिट एंड हॉट है सबको नचाओ, आज की आवाज में है आग, हर गाने में है एक नया राग, जो एक बार सुन ले ये शो वो बोले बस यही है मेरा फ्लो, न रुके न झुके बस बचता जाए, हर दिल को अपने रंग में रंगाए, शाम हो या रात का नशा, हिट एंड हॉट का है अलग ही मजा, तो कान में ईयरफोन डालो और वॉल्यूम को फुल पे पढ़ा।

हाँ, क्योंकि आ गया है अपना शो हिट एंड हॉट शो, सबसे हॉट शो। आय हाय, क्या बात है हितेंद्र दास, थैंक यू सो मच। इतनी इतनी प्यारी लाइन्स है, इतनी खूबसूरत लाइन्स है, काफ़ी कूल है मैं ऐसा कहूँगी। और इस हॉटनेस में इस कूलनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो खास आपके लिए अगला गाना सितारे ज़मीन पर इस फिल्म से।

पति पत्नी और वो दो है क्या गाना है, नई फिल्म है, नया सा गाना है और इस फिल्म में इस गाने के और भी वर्जन्स हैं, लेकिन आयुष्मान खुराना की अगर फिल्म है और उसमें उनकी आवाज़ में किसी गाने का उनका खास अलग वर्जन ना हो तो वो अधूरा सा लगता है, और इसीलिए शायद ये गाना जो है आयुष्मान खुराना की आवाज़ में और उन्हीं का एक अलग वर्जन हमने सुना, बहुत अच्छा गाना है, बहुत मज़ा आया सुन के। उसी तरह श्रेष जो है उनका कॉल आया और उन्हें बॉर्डर 2 का गाना सुनना है, तो आपने पसंद अपनी भेजी है पहली बार, तो जल्द से प्ले करते हैं गाना। आवाज़ें दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन, साचेत टंडन आवाज़ों में, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर।

सही गलत हार जीत ये सब तो चलता रहता है, लेकिन अगर कोशिश की है, सच्चे दिल से कोशिश की है और बस लगे हुए हो उस किसी भी काम को लेकर, किसी भी मकसद को लेकर, तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, ख़ास होता है। और फिर वो चाहे काम बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो। FM रेनबो आप सुन रहे हो, हिट एंड हॉट शो चल रहा है। आपने तय किया होगा कि आज एक लंबी लिस्ट भेजेंगे या फिर बस एक ही गाना बहुत दिल कर रहा है सुनने का, वो बता देंगे हार्दिक और वो अपनी पसंद प्ले करेंगे। लेकिन अचानक से सरप्राइज टेस्ट आता है और कहा जाता है कोई नया गाना पसंद हो तो ज़रूर मुझ तक पहुंचाना। शुरुआत में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, ऐसे लगा, लेकिन धीरे धीरे अब हर कोई कोशिश कर रहा है। उन्हीं में से दो लिसनर्स जो है उनके गाने हम जल्द ही सुनने वाले हैं। पहला गाना जो सुनने वाले हैं वो है दीपा पालकर का हाउसफुल 5। एक नहीं दो नहीं, हाउसफुल 5 पर पहुँच गए। उस फिल्म का बहुत अलग सा गाना है, आप और मैं साथ मिलकर सुनते हैं और फिर अपने आप को बताते हैं कि वाकई ये नए गाने हमें पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं।

एफएम रेनबो पर मैं रोशनी आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। हिट एंड हॉट शो चल रहा है आखिरी के 20 मिनट और आज एक लंबे अरसे बाद ऐसे हुआ है कि हम नए नए गानों का मजा ले रहे हैं एफएम रेनबो पर। और कई बार ऐसे होता है ना, हम अपनी ही पसंद में या फिर हमारे ही कंफर्ट जोन में इतने खुश रहते हैं और अचानक से कुछ बदल आ जाता है तो शुरू में वो खास नहीं लगता, लेकिन एक वक्त के बाद वही बात जो है और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। ऐसे ही कई सारे लिसनर्स हैं जिनका कहना है उन्हें ज़्यादातर पुराने गाने ही सुनना पसंद है, लेकिन आज शो के बहाने जो है नए गाने सुनने को मिल रहे हैं तो उन्हें ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हीं में से एक हैं यशवंत आडमुठे। थैंक यू सो मच, आप नए गाने इतने ज़्यादा पसंद कर रहे हो। और जो अगला गाना हम सुनने वाले हैं उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया है। बहुत लंबा नाम है फिल्म का, लेकिन इस फिल्म से गाने की जिन्होंने फरमाइश की है वो है पंकज महोत साथ ही विजेंद्र घटोल। तो इन दोनों के पसंद की फिल्म का गाना सुन लेते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं। वक्त बता रहा है कि आज की रिक्वेस्ट जो है पूरी हो गई है, लेकिन अच्छे से लिसनर बन के गानों को एंजॉय करो, सुनते रहो 107.1।

1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट. ओए है क्या खूबसूरत गाना है. फिल्म भी थोड़ी नई नई अलग सी है और गाना भी बहुत खूबसूरत है. पुनीत दीक्षित और दीपाली साठे ने गाया हुआ है. इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ज़रूरी है कुछ अलग और नया करते रहना, नया सुनते रहना. बहुत सारे लिसनर जो है शुरुआत से जुड़े हुए हैं, हिट एंड हॉट में भी हमें सुन रहे थे, जैसे कि स्वर्ण सिंह, मुकेश कश्यप, प्रवीण जी भी हमें सुन रहे हैं, आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष भी हमें सुन रहे थे, शुभलक्ष्मी मस्तकर जो हमारी रेगुलर लिसनर है वो भी कार्यक्रम में जुड़ी हुई है, फिरोज सिगनपुरिया है, चेतन कुमार, मेहर अरोरा, अशोक पाटिल वर्ली से हमें सुन रहे हैं, गुरमीत सिंह, मीता सिंह, दिग्दर्शन कविता, प्रणव शिंदे, प्रमोद चिंचोलकर, संदीप कुमार, राजेंद्र परमार, आकांक्षा, मनोज सिन्हा, संजय दर्शन, ऐसे बहुत सारे लिसनर जुड़े हुए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए. जो है बैक टू बैक दो गाने यहाँ पर लाइंड अप है. एक गाना हम सुनने वाले हैं वेदा फिल्म से और दूसरा गाना जो है आखिरी गाना दे दे प्यार दे टू फिल्म से गाना है. ये गाने भी उतने ही ज़बरदस्त और लाजवाब है. ज़रूर इन गानों का मज़ा लेना. और जाते जाते बस यही कहूँगी कि कभी कभी कुछ कहकर लोग अपनी एक प्रभावशाली छाप छोड़ देते हैं और कभी कभी कुछ लोग चुप रहकर ही अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं. तो हमें तय करना है कब कुछ कहना है, कब चुप रहना है और किस तरह अपनी जो है एक बहुत ही अलग और सुंदर पहचान बनानी है. इसी नोट पर रोशनी की तरफ से आज के लिए टाटा गुड बाय, आज के लिए आखिरी सलाम. जल्द मुलाकात होगी ओनली ऑन 107.1.

नमस्कार, ये है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। दोपहर के ठीक 2 बजे हम सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार। तो सुनते रहो 107.1 जो है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: The Meteorological Department IMD forecast heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Heavy rainfall is also likely to prevail over South Interior Karnataka and Uttarakhand during the day. IMD said Lakshadweep, Bihar, Andhra Pradesh, East Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal and Sikkim are also expected to witness thunderstorms, lightning and gusty winds today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 p.m. today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins the Tarun Chowdhury Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies US suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन

0: दिन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे, जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्टोरेंट में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
3: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द स्टैंडर्ड
0: सेटिंग टेबल। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ TVK के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
4: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल है। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न

0: करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची एच, HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्र, कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और

सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड इवनिंग मुंबई और मुझे सुनने वाले देश के कोने कोने से, देश के बाहर से भी इनफैक्ट अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं आरजे भावना आपके साथ। सरप्राइज, हमारा प्रोग्राम जैसे कि आपको पता है लव यू जिंदगी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस प्रोग्राम में हम अक्सर आपसे बात करते हैं जिंदगी से किस तरह प्यार करें, जिंदगी को किस तरह जिए, ये सब बातें मैं नहीं करने वाली, ना ही कोई लेक्चर देने वाली हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे, जी हाँ, आज हम आपसे बातें करेंगे, आपके नज़रिए से हम जानेंगे कि आखिर प्यार है क्या। आई नो बहुत ही क्लीशे टॉपिक है, बहुत ही रोज़ एक ही चीज़ हम बात करते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा शब्द है ना प्यार, जिसे जितनी भी भाषा में कह लो, अलग भाषा हो, अलग नज़रिया हो या फिर अलग अंदाज हो, लेकिन एहसास एक होता है। तो बस इसी एहसास को फील करेंगे आज, और ये फीलिंग शुरू शुरू में थोड़ा आपको शायद दिल में धक धक भी लेकर आए, लेकिन उससे पहले आज का माहौल कैसा है। देखिए, मैं तो यूजुअली आपको सुबह मिलती हूँ, लेकिन आज शाम जब मैं निकली हूँ आज शाम के शो के लिए, तो हाय हाय हाय गर्मी, हाय गर्मी। इस गर्मी में एक गाना मुझे सबसे पहले जो बार बार गूंज रहा था वो है अलका याग्निक की आवाज़ में अगला गाना, जो आपको आई एम श्योर बहुत ही दिल तक पहुंचेगा, शायद आपके दिमाग पर भी गहरा असर छोड़ जाएगा। इस गर्मी में ये पानी वाला टिप टिप बरसा पानी गाना।

हाय, क्या करेंगे जब इतनी गर्मी हो, पसीने में लथपथ हम हो और ऐसे में कोई आकर आपसे बात करने की कोशिश करे तो जरा चिड़चिड़ सा होने लगता है। नहीं, वेल, कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हम डांटना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन प्यार से अगर कोई बात कहनी हो तो अचानक शब्द ही कम पड़ जाते हैं। और किसी की गलती अगर बतानी हो तो तुरंत लिस्ट बन जाती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हमारे बारे में कोई अच्छी बात आपको नजर आई है, हमारा दिन अच्छा बना दिया किसी ने, और ये बताने में पता नहीं कितने देर लगा देते हैं हम। क्यों होता है आपके साथ भी ऐसा?

वेल, आज शाम इसी आदत के बारे में हम सोचने वाले हैं। कोई बड़ा वादा नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बस छोटी छोटी बातें जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाए। और हमें पता भी नहीं होता कि हमने शायद ये काम कर भी दिया है अनजाने में, लेकिन इसकी आदत बनने में थोड़ा वक्त लगता है। वेल, मैं हूं आरजी भावना और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1। और शाम के ठीक 5:10 हो रहे हैं और हम लव यू जिंदगी प्रोग्राम में एक साथ प्यार की बात करने वाले हैं। जी हाँ, प्यार की बातें होंगी, जिंदगी की बातें होंगी और उन एहसासों की भी जिन्हें हम महसूस तो बहुत करते हैं लेकिन कह पाने में थोड़ी मुश्किल होती है। कभी लगता है कि कुछ ना कहो और कभी कभी ऐसा लगता है बहुत कुछ कह दो लेकिन कैसे। बस इसी कश्मकश में हम सबसे ईजी स्टेप चुनते हैं, वो है कुछ ना कहो। लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता है, दिल के अंदर बहुत सारे एहसास और मन के अंदर बहुत सारे बातें जो कह नहीं पाते।

5:23 on the clock, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 with me RJ भावना, जहां प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी। लेकिन आज हम जिंदगी से नहीं, जिंदगी में उन लोगों से भी लव यू कहेंगे जो बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम कितनी बार कहते हैं आई लव यू। ये शब्द ना बहुत प्यारा है लेकिन इस्तेमाल काफी कम होता है। कई बार तो बस गले तक रहता है, दिल में भी रहता है पर जबां पर नहीं आता। ये झिझक, ये ना बोल पाने की मजबूरी क्यों है? क्योंकि शायद हम डरते हैं, इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि ये बोलने के बाद सामने वाला क्या कहेगा। इसी बात पर हम अपने फीलिंग्स को, अपने एहसासों को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। मैं तो कहती हूँ, सामने वाले आपसे क्या कहेंगे या फिर वो क्या सोचेंगे, इसे भूलकर क्यों ना आप जो महसूस करते हैं उसे कहकर देखिए, उनके लिए नहीं, खुद के लिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको कभी किसी की इतनी याद आई है कि फोन हाथ में लिया है आपने, उसका नाम भी देखा, फिर वापस फोन रख दिया, फिर सोचा ये भी होगा कि मैसेज करूं या नहीं, कॉल करूं या नहीं, अब सामने वाले को परेशानी तो नहीं होगी, शायद वो काम पे होंगे या फिर कुछ ज्यादा तो नहीं कह रहे हम। ये चीज सोचते सोचते गाड़ी हमारी छूट जाती है और फिर हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और इसी चक्कर में हम वो बात कहना भूल जाते हैं जो हमें कहनी थी। और फिर हमारे जबान से निकलता है, अरे थोड़े बिजी थे इसलिए बात नहीं कर पाए। वेल, याद तो उनकी आती है आपको, बस जिस वक्त याद आती है ना उस वक्त हम बात नहीं कर पाते, फिर वो बात यादों में रह जाती है और जब मौका मिलता है तब कहने को कुछ नहीं रहता। इसी चक्कर में इजहार भी रह जाता है। और ये सिर्फ हमारे पार्टनर्स के लिए नहीं, हमारे जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं उन सभी के लिए ये बात बखूबी मायने रखती है। और सोचिए जरा, कभी कभी आपको भी कोई ऐसे रैंडम मैसेजेस आ जाएं तो आपके चेहरे पर वो मुस्कान लाते हैं या नहीं? कोई बहुत ही पुराना दोस्त आपको 10 साल बाद शायद या 20 साल बाद मैसेज करे कि अरे आज तो मैं गया था उस चाय की टपरी पर जहां हम बैठकर बहुत गप्पे मारते थे,

0: बस वहां गया तो तुम्हारी याद आ गई, तो मैसेज कर दिया। ये सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान तो आएगी और शायद वो यादें भी वापस आ जाएंगी। जब आपको वो इतनी खुशी दे सकती है तो सोचिए सामने वाले को भी तो वैसा महसूस हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे मैसेज कर दें तो क्या पता शायद सामने वाले की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा हो जो वो कह नहीं पाता, लेकिन आपके एक मैसेज से उसके तूफान भरी जिंदगी में एक ठंडक आ जाए, एक सुकून आ जाए कि चलो कोई है जो हमें याद कर रहा है। यकीन मानिए बस एक मैसेज बहुत कुछ बदल सकता है। तो सोचना किस बात का, जरूरी नहीं कि हर बार लंबी बात हो, कभी कभी बस इतना ही कह दीजिए कि आज आपकी याद आई तो सोचा मैसेज कर दूं या सोचा बता दूं, एक मिस कॉल ही सही। फिर सामने वाला बात करने की हालत में है या नहीं वो उन पर छोड़ देते हैं, क्योंकि प्यार में थोड़ा वक्त देना भी जरूरी होता है। तो बताइए इन सब बातों को सुनकर आपको सबसे पहले किसकी याद आई, कौन सा वो शख्स है जो आपके नजरों के सामने घूमा। बस अगर वो शख्स आपके दिमाग में आया है मतलब आप उन्हें याद कर रहे हैं। इसी मौके पर नहले पे दहला मार दीजिए और तुरंत मैसेज कर दीजिए। आपके बैकग्राउंड को और भी रोमांटिक बनाने के लिए ये अगला रोमांटिक गाना।
1: मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते, मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज़ और खामोशी टकराते गए फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

5:37 ऑन द क्लॉक और मेरे नज़र के सामने आप लोगों के मैसेजेस हैं जो धीरे धीरे मैं अब पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि अब जाकर मूड थोड़ा, माहौल और मूड दोनों एक साथ बने हैं। तो चलिए, आज इजहार की बात कर रहे हैं तो आप लोगों की बात मुझ तक तो पहुँच रही है और आप लोगों की बातों का जवाब भी मैं आपको इसी वक्त देती हूँ, ये आपको पता ही है। और अगर आप अभी अभी जुड़े हमारे साथ और आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है तो मैं बता दूं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 पर मुझे आरजे भावना को, और आज हम बात कर रहे हैं इजहार के बारे में। हाँ, प्यार के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, पर कहते हैं ना, पढ़ने के बाद उसे ज़िंदगी में अमल करना काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल हालात नहीं, मुश्किल चीज़ें या फिर एहसासों को बयां करना नहीं, बस एक वो झिझक जो है ना, उससे निकलना होता है। और वो झिझक कहीं ना कहीं हम खुद पैदा करते हैं। बातें तो बहुत होंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आप सुन कहाँ रहे हैं मुझे, क्योंकि इस वक्त 5:38 हो रहा है, राइट, 5:38 ऑन द क्लॉक। आप लोग आज या तो ऑफिस में होंगे या फिर शायद शाम के चाय का वक्त हो चुका है। आए हाय, मेरा फेवरेट टाइम है ये। तो चाय पीते पीते अगर सुन रहे हैं तो नाश्ता क्या है साथ में वो भी बताइएगा मुझे, या फिर ड्राइव करते करते सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स तब टेक्स्ट मत कीजिएगा, आराम से पार्क करने के बाद गाड़ी मुझे बताइएगा। लेकिन कैसे बताएंगे, व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है वो शेयर करती हूँ, 8657661071, 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे मैसेज करके बताइए कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे। देखिए, कानों से तो आप सुन रहे हैं और दिल तक मेरी अगर आपकी आवाज पहुंच रही है तो और भी बढ़िया, लेकिन दिल में जब आपके आवाज ये मेरी पहुंचती है तो आप उसे रिप्लाई कैसे करते हैं, ये भी तो ज़रूरी है। आप बस अगर सुनते रहें और मुझे ये ना बताएं कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, प्रोग्राम कैसा लग रहा है, तो वो एक तरफा हो जाता है रिश्ता, क्यों? और कभी कभी ये भी हम सोचते हैं ना कि कोई मौका देखकर हम बात करेंगे। जैसे अब मैंने आपको एक बस हिंट दे दिया कि ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था आपको, क्यों नहीं किया आपने मैसेज? चलिए, हक भी वही होता है जहां डांट होती है और डांट वही होती है जहां हक होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता भी होगा आपके साथ कि तारीफ करने के लिए हम एक्चुअली ओकेजन्स ढूंढते हैं, जैसे अगर किसी की फेयरवेल हो, या फिर अगर आप किसी को कंग्रेचुलेशंस करते हैं, या फिर अगर कोई गेम ही खेल रहे हैं, गेम खेलते खेलते आपको एक ऐसे ही रूल दिया जाए कि आपको उस इंसान के बारे में अच्छी बात करनी है, तब आप थोड़ा हिचकिचाते तो ज़रूर हैं, क्यों? लेकिन अगर कोई आपके लिए वक्त निकालता है, आपकी बात सुनता है, आपके मुश्किल दौर में वो आपके साथ खड़ा रहता है, तो आपका वो दौर भी ना बड़ा आसान लगता है। तो उसे बताइए कि उनका होना भी काफ़ी सुकून देता है। और तारीफ सिर्फ चेहरे की थोड़ी होती है कि अरे आपके कपड़े जच रहे हैं, आपका चेहरा बहुत प्यारा है, तारीफ इंसान की भी होती है, उनकी फितरत की, उनके मिजाज की, ये सारी बातें। जैसे किसी की बात सुनकर आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो ध्यान से सुनते हैं, आप बात कर रहे हो और कोई बिना टोके, बिना सजेशन दिए, बिना एडवाइस दिए, बस आपको सुनता है, या फिर शायद किसी के होने से ही आपकी लाइफ आसान होती है, या किसी के साथ रहकर आपको आपसे एक अलग इंट्रोडक्शन मिलता है, जिनके साथ आप अलग इंसान बनते हैं और एकदम फ्री, कोई दिखावा नहीं। तो ये बातें उनको बताना भी तो ज़रूरी है, बताइए तो सही, तो उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। और शायद इसी बात पर आपको भी आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चले जो शायद आपको भी ना पता हो कि आप कितने अच्छे हैं। इसी अच्छाई के साथ बातें करना काफी जरूरी है। अगला गाना अलका याग्निक की आवाज में आपको सुना रही हूं, ये गाना सुनिए और शुरू हो जाइए अच्छी बातों को सोचते सोचते। वो अच्छी बातें किन्हें मैसेज करके बताएंगे, सबसे पहले तो आप मुझे मैसेज कीजिए।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: 5:47 ऑन द क्लॉक और आप सभी के मैसेजेस पढ़कर मुझे बस एक ही फीलिंग आती है, जैसे ही मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ आप लोगों का इतना प्यार जो बरसता है ना, मुझे ऐसा लगता है बस गर्भा शुरू होने वाला है, उसके पहले कमर कस के हालो हालो, बस वही फीलिंग आती है कि अब तो आपके मैसेजेस पढ़ने में कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं शो कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप लोग मेरी आदत बिगाड़ रहे हो, मत किया करो इतना प्यार। बट नहीं, आई फील सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड क्योंकि इतने प्यारे मैसेजेस आते हैं आपके, स्पेशली मुझे चाय मिल जाती है स्टूडियो में, डिजिटली ही सही पर हाँ, मुझे डॉक्टर अंजू जी की तरफ से चाय तो मिल चुकी है। नाश्ता कौन दे रहा है वो बता दीजिए, अब जल्दी से चाय के साथ नाश्ता भी मुझे भेज दीजिए, डिजिटली ही सही पर भेज दीजिए यार, आपको पता है खाने के साथ मेरा प्यार कितना गहरा है। और हमारे पास बड़ा ही प्यारा सा मैसेज आया है। आई नो जब हम बात करते हैं उन यादों की तो उन यादों के साथ वो इंसान भी आ जाता है और जो प्यारी बातें आप करते हैं। हमें संजय दर्शन जी ने एक बात बड़ी प्यारी बात कही है, इनफैक्ट वो कहते हैं कुछ नंबर आपके फ़ोन में ऐसे होते हैं जो ना आप डायल कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। अब ये भी एक मुद्दा है जो अगले शो में ज़रूर हम बात करेंगे इस पर, ये मीठा मीठा दर्द है लेकिन है तो अपना ही। और यहीं पर एक और बड़ा ही प्यारा मैसेज आया है, वो मैं ढूंढती हूँ और आपको सुनाती हूँ कि वो मैसेज आखिर किसने भेजा है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ साथ साथ इनफैक्ट 5 बजे से यशवंत आठमुड़े जी, रजनीकांत पाटिल वाधवन जी, अशोक पाटिल वराली से अंकित, संजय दर्शन, दीप शाह, सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश दामोदर कड़ू, फिरोज सिगन पुरिया जुड़ चुके हैं, वी हैव प्रणव शिंदे, वी हैव दत्ता केदार पंढरपुर से, राकेश माथुर जी हैं, विजेंद्र घाटोल अकोला से, राजेंद्र परमार जी, और इनफैक्ट एक बहुत ही प्यारा मैसेज भी आया है, दैट इज फ्रॉम सोनवने फूलचंद अकोला से। कहते हैं आपकी बात सुनकर मुझे तो बचपन का दोस्त याद आया जो 25 साल से बिछड़ गया और फैमिली में इतना बिजी हो गया कि हेलो हाय तक नहीं करता, उसके लिए तो एक ही गाना सुनना चाहता हूँ आपके लिए। इनफैक्ट मैं गाना प्ले करने वाली हूँ क्योंकि ये फीलिंग हम आपके पास तो नहीं रहने देंगे। अक्सर हमारे फ़ोन में वो एक दोस्त होता है ना जिसे हम बहुत याद करते हैं लेकिन वो शायद हमें याद नहीं करता क्योंकि सब बिजी है अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं कि चलो जिंदगी है, हर कोई बिजी है, लेकिन ये एक तरफा प्यार की ताकत, ए दिल है मुश्किल में शाहरुख खान का डायलॉग याद कर लीजिए, आपको पता चलेगा इस पे सिर्फ आपका हक होता है। तो अगर आपको किसी की याद आए और वो आपको याद ना करे तब भी आप दरवाज़ा उनका खटखटाइए और दया की तरह दरवाज़ा तोड़कर उन्हें मैसेज कीजिए कि सुनो तुम मुझे याद करो ना करो मैं तुम्हें याद करता हूँ। तो फूलचंद जी कर दीजिए मैसेज उनको, आज आप डोरबेल इतनी बार बजाइए उनके दरवाजे पर जाकर कि वो खुद परेशान हो जाए कि यार तेरी दोस्ती यही जिद मैंने बहुत मिस किया, यही जिद तो चाहिए। वेल विद दैट आपको एक और गाना सुनाती हूँ चित्रा की आवाज़ में, चित्रा जी की आवाज़ में ये अगला गाना आप सुनेंगे फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे।

0: तो शर्माना कैसा कह दीजिए, 5:55 ऑन द क्लॉक, देखिए 5:55 क्या वक्त है। और मुझे आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, साथ साथ नाश्ता भी आ ही चुका है, गर्मा गर्म समोसे। और हमारे पास नाश्ता आया है राजेश लद्दा की तरफ से, जो कि थाने से हमें गाड़ी चलाते चलाते सुन रहे हैं, चलते चलते सुन रहे हैं। गाड़ी आप चला रहे हैं तो जरा ध्यान से, कान भले ही हमारे पास हो लेकिन नजरें प्लीज सड़क पर रखिए, संभाल कर चलाइए गाड़ी। और नाश्ता इन्होंने भेजा है, बर्गर सैंडविच फ्राइज, आए हाय हाय मजा आ गया, और समोसे चाय के साथ, समोसे तो क्या कहना। वेल विद दैट आपको बता दूं, आप सभी के मैसेजेस मिल चुके हैं मुझे। प्रणव शिंदे, श्रीधरन बालचंद्रन विद्या विहार ईस्ट से हमें सुन रहे हैं, फिरोज सिगनपुरिया ग्रांट रोड से, राकेश माथुर विजेंद्र घाटो लकोला से, प्रमोद चिंचोलकर हमें सुन रहे हैं भाटावाड़ेकर चंद्रशेखर अंधेरी से, डॉक्टर अंजू प्रवीण जी, एंड वी ऑल्सो हैव सागर ढके परभणी। ये नाश्ता आपने भेजा है क्या, ये मुझे समझ नहीं आया, ये कौन सा नाश्ता है, इसके बारे में मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। वेल आपका नाम भी बता दीजिए, 92901 सागर जी आपने क्या नाश्ता भेजा है बताइए, तो सस्पेंस में आप मुझे परेशान कर देंगे। वेल संजय दर्शन जी के साथ सुनावने फूलचंद, राजेंद्र परमार जी, अशोक पाटिल वराई से, शुभदा जी पैकिंग तैयारी सब ठीक ठाक कर लीजिए, पंकज महौर जी, वैदेही जी, एंड वी हैव लॉट ऑफ लिसनर्स। आप सभी के मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन उससे पहले वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, ठीक 6 बजे वापस से आप न्यूज़ सुनेंगे और न्यूज़ के उस पार एक नया अंदाज। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही प्यारा गाना, जैसे अंताक्षरी में ई से क्या आता है वही गाना दोस्ती के ऊपर,
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।
0: ई से कौन सा गाना, इमली का बूटा।

वेल, शाम के 6:21 हो रहे हैं और अब वक्त है लफ्जों के साथ थोड़ा ठहरने का। अब प्यार का सुकून था, लेकिन अब ठहराव पर आते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे अपने दिल की, अपने रिश्तों की। अब उन्हीं एहसासों को सुनेंगे उन खास गजलों, ठुमरी, दादरा और सूफियाना कलामों में, जो पहले अदब, शायरी और हमारी लोक संस्कृति की धरोहर हैं और बाद में सिनेमा के पर्दे पर अमर होते गए। मैं हूं भावना और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 पर मुझे सिर्फ और सिर्फ यहीं, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स। और अगले एक घंटे तक आपके साथ, चलिए एक घंटा तो नहीं, बिकॉज उसके पहले तो आपने न्यूज़ सुनी होगी, लेकिन ठीक 7 बजे तक आपका और हमारा साथ

कुछ नए अंदाज में चलेगा, अंदाजे बयां पर। तो चलिए सबसे पहला गाना आपको सुना रही हूँ कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाज में। अब ये नाम आपने सुना होगा लेकिन नए नाम है ये, पर गाना जो आप सुनने वाले हैं जुग जुग जियो फिल्म से रंगे सारी। रंगे सारी गाना एक्चुअली अगर कहूँ तो ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल ठुमरी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया शोभा गुट्टू जी, जो लेजेंड है शोभा गुट्टू जी, उनके गाए हुए गीत में से एक है। तो उसी का एक फिल्मी वर्जन आपको सुना रही हूँ नेक्स्ट।

6:36 ऑन द क्लॉक, 6:36 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स विद मी आरजे भावना। अंदाजे में यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर अंदाज ठुमरी का चल रहा है और ये जो हमारे गीत हैं जो ठुमरी दादरा राग से भरपूर क्लासिकल लेजेंड्स के दिए हुए बनाए हुए गाए हुए गाने आपको फिल्मों में सुनने मिलते हैं और इन फिल्मों के जरिए ही कहीं ना कहीं हम अपने संस्कृति से मेल भी खा लेते हैं, मिल लेते हैं, क्योंकि शायद इसकी शैली बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है, चुनिंदा लोगों तक, लेकिन फिल्मों के जरिए ये हर एक इंसान को छू जाती है। और जब आप ये गाना सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर सोचते होंगे कि आखिर ये गाना कहाँ से आया, ये पहले क्यों नहीं सुना। पर ये हमेशा से हमारी धरोहर रही है और ऐसे ही एक धरोहर हमें सौगात में मिली कथक लेजेंड पंडित बिरजू महाराज जी की तरफ से, यहाँ क्लासिक स्टाइल ठुमरी जो 2002 की फिल्म देवदास में आपने सुनी। अगली आवाज आप सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति पंडित बिरजू महाराज की आवाज में देवदास से ये गाना।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्लॉक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 म्यूजिक रियोज विथ मी आरजे भावना। और हमने बात की थी ना शुरुआत में शोभा गुटू जी के गानों की, उनके ठुमरी स्टाइल जो है वो कई फिल्मों में यूज़ की गई है, लेकिन न सिर्फ जुग जुग जियो इस फिल्म में नहीं बल्कि एक और फिल्म आई जिसमें इस गाने को इंस्पिरेशन रैप्टेशन कहिए, ये गुलाब गैंग। जी हाँ, गुलाब गैंग मूवी में दोबारा से ये गाना आपको सुनने मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल आप ज़रूर सुनिएगा। आपको मैं इस वक्त सुनाने वाली हूँ गुलाब गैंग का वही गाना, रंग सारी गुलाबी। और ये फील थोड़ी डिफरेंट है जो आपने जुग जुग जियो में सुना था। वेल, गाने को आप ऑर्केस्ट्राइजेशन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो फील होती है ना, जो एहसास होता है उस गाने का, वो वही रहता है। और इस गाने के एहसास को नए ढंग से सुनिए ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1।

சுந்தரபியா ஆரத்தே.

ஆ

6:53 on the clock और अब जब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आपने आवाज़ सुन ही ली है तो बेगम अख्तर को कैसे भूल जाएं। और कोशिश तो यही है कि आपको रेखा जी की जो अदाएं आपने उमराव जान में देखी थी वो भी नज़ाकत आपको सुनाऊं, पर उससे पहले बेगम अख्तर की आवाज़ में ये अगला गाना।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: 7:12 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विथ मी आरजे भावना और आप लोगों का फेवरेट जिस शो का आप इंतजार करते रहते हैं, जी हाँ, रिक्वेस्ट आवर हमारी शुरू हो चुकी है। हम तुम इस बार मैं आपको शाम के वक्त मिली हूँ और आप आज तो बहुत फुर्सत में होंगे। आप काम से घर लौट रहे होंगे या फिर शायद इस वक्त ट्रेन में या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होंगे। वैसे जैसे भी आप हमें सुन रहे हैं, आज थोड़ी जद्दोजहद फिर से करने वाले हैं। अगर आप पहली बार मुझसे शाम को मिल रहे हैं तो आपको बता दूँ, हमारा एक इसमें थोड़ा ट्विस्ट होता है। अब मुझसे कहा था ना, संजय दर्शन जी कह रहे थे कि आजकल फ़ोन कोई उठाता नहीं है, हर कोई बिजी है, फ़ोन पर बात कौन करता है, आपने कहा था या फिर एक और हमारे लिसनर ने कहा था। तो मैंने बहुत पहले से ये सोचा था कि हम फ़ोन पर बात करते हैं, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट हम फ़ोन इन लेने वाले हैं। आप फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट बताएंगे, व्हाट्सएप बंद होगा हमारा। तो आप अगर व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस भेज रहे हैं ना मुझे कि ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट चाहिए, ये प्लीज़ बता दीजिएगा, जी नहीं, आपकी रिक्वेस्ट नहीं पूरे होने वाली। जी हाँ, मैंने ना कहा ना, इसलिए क्योंकि आप फोन करके मुझसे बताएंगे, बात करेंगे कि आखिर आपने आखिरी बार चिट्ठी कब लिखी थी और किसे। और इसका जवाब तो सबसे पहले संजय पाटिल जी ने हमें दे दिया है, क्योंकि उनके मैसेज के थ्रू मुझे एक बहुत ही प्यारा सा इमेज आया है पोस्ट का, ऑल इंडिया रेडियो जलगांव से उन्हें पोस्ट आया था। हाय हाय, वो चिट्ठी का दौर जब हम खुद अपने हाथों से लिखते थे और बयां करते थे अपने जज्बात। वेल, आज चिट्ठी की बात इसलिए क्योंकि आज वर्ल्ड पोस्ट डे है और आज ही के दिन हम बात करेंगे उन यादों की जो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। ज़रा सोचिए ना, हम पहले खुले आसमान के नीचे अपनी इमेजिनेशन के साथ, ख्यालों के साथ, एक काली तख्ती और एक सफ़ेद चौक, इससे हम सीखते थे अ आ ई, फिर या ए बी सी डी, और फिर हमने पेंसिल शुरू की। पेंसिल के बाद दौर आया स्याही का, फिर पायलट पेन के बाद रंग बिरंगे कलर वाले पेन। उसमें भी काफ़ी कंपटीशन रहा कि किसके पास सबसे बेस्ट पेन होगी या सबसे अच्छी पेंसिल। फिर पेन पेंसिल, कितने सारे इन्वेंशन हुए, लेकिन आखिर में क्या हुआ, हम बस एक छोटे से डब्बे में टाइप करने लग गए। अब वो भी मुश्किल हो गया है जनाब, अब तो सीधे वॉइस नोट जाते हैं और फिर भी उनके रिप्लाई नहीं आते। वो इंतज़ार, वो तड़प जवाब की, वो जो है ना, वो कहीं छूटती जा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस बार फ़ोन रखते हैं, आप हमारी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन हमें आज आपकी आवाज़ सुननी है। तो आप अपनी कहानियाँ मुझे बताइए कि आपने आखिरी बार चिट्ठी किसे और कब लिखी थी, और अगर नहीं लिखी थी तो किसे लिखना चाहेंगे। और यकीन मानिए, ख्यालों की दुनिया में कोई फुल स्टॉप नहीं होता, जिसे मन चाहे उसे चिट्ठी लिखिए, जवाब ख्यालों में आपको जरूर मिलेगा। क्या पता अगर आप सच में भेजें तो इन रियलिटी भी मिल जाए। ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं हमारे जो खतों के जवाब अभी भी देते हैं। इसी बात पर एक अगला गाना आपको सुना रही हूँ किशोर कुमार जी की आवाज़ में, फ्रॉम द फिल्म पलकों की छाँव में, क्योंकि इस थीम पर काफ़ी फिट बैठता है ये गाना। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट किसकी होगी, हमारे फ़ोन लाइंस खुल चुके हैं और अगर आपको नहीं पता तो चलिए आपके लिए मैं नंबर धराती हूँ, 022 ये हमारा कोड है। उसके बाद 4515 4132, यानी कि 4515 4132। तो झट से आप फ़ोन उठाइए और फटाफट आप मुझे कॉल लगाइए, बात करते हैं, गाने की रिक्वेस्ट लेते हैं। इनफैक्ट आप कहानियां बताते बताते क्यों ना आप मुझे आपकी फेवरेट नाना पाटेकर जी का गाना सजेस्ट करें। नाट्य सम्राट कहते हैं हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी अदाकारी, उनके फिल्मों के गाने, उनकी याद कभी नहीं जाने देंगे, हमारे दिलों से, हमारे जहन से कभी भी नहीं जाने वाले। तो आप क्यों ना उन्हीं की याद में कोई गाना रिक्वेस्ट कर दीजिए। विद दैट, चलिए सबसे पहला ये गाना सुनते हैं, डाकिया डाक लाया, और क्या संदेशा लाया। अब संदेशा तो आपसे मिलेगा, फोन लाइंस शुरू हो चुकी हैं, चलिए जल्दी से फोन लगाइए, आपके कॉल का इंतजार है।

चलिए हमारे पहले कॉलर जो है हमने चुन लिया है, कंग्रेचुलेशंस फिरोज सिगनपुरिया जी का कॉल लग चुका है फाइनली, और इनकी रिक्वेस्ट है सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल ट्रैक। और ये बात तो हमारे सभी रेनबो के आरजेज लिसनर्स, जो म्यूजिक ग्रुप है इनकी, ये सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर जी के ये कितने बड़े फैन हैं। जो प्यार इनका लता जी के लिए है वो हर कोई जानता है, और वही प्यार आप सभी के पास भी है। लता जी हैं ही ऐसी, इनकी आवाज़ जो घुल जाए आए है। वेल, इन्हीं की आवाज़ में आप सुनेंगे अगला गाना, लेकिन उससे पहले आप लोग जो मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को क्यों लगता है कि आपके मैसेजेस पर मैं आपके रिक्वेस्ट ले लेने वाली हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि फ़ोन इन्स आने वाले हैं, वैसे ही हमारे डीओ साहब यानी ड्यूटी ऑफिसर भी हमें लेटर लिखकर दे रहे हैं कि आप हमारा गाना रिक्वेस्ट कीजिए। जी नहीं, आपको कॉल करना होगा बकायदा हमारे लिसनर्स की तरह। यहां पर कोई चीटिंग नहीं होने वाली, कोई भेदभाव नहीं। तो चाहे आप पुराने लिसनर हैं, नए लिसनर हैं, अभी हमें सुन रहे हैं, बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये फोन जो है ना, ये मोहतरमा किसी को नहीं पहचानती, सच कह रही हूं, ये किसी को नहीं पहचानती। आप इन्हें रिश्वत भी दे दो ना, तब भी वो आपको नहीं पहचानने वाली। अफसोस की बात ये है कि नंबर्स हमें दिखते नहीं हैं, तो अच्छी बात भी यही है कि नंबर हमें दिखते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आप हमें पहली बार कॉल कर रहे हैं या दूसरी बार, या फिर आपने पहले कभी कॉल किया होगा। सो कोशिश करते रहिए, क्योंकि फोन लाइन्स रिंग हो रही हैं। और इसी के साथ आपको क्रिकेट अपडेट भी मिलना चाहिए। क्यों, वैसे पता है ना आज क्रिकेट मैच चल रहा है, क्या हाल है। उसी के साथ हमें एक और चीज़ पता चली है, फिरोज सिगनपुरिया जी ने हमसे एक और बात शेयर की है, वो बताऊंगी इस अगले गाने के बाद। लेकिन आप फ़ोन करते रहिए, क्योंकि अगला कॉलर शायद आप हो सकते हैं।

वेल, हमारे पास हमारे दूसरे लिसनर भी आ चुके हैं और इस रफ्तार से आपको पता चल चुका होगा कि लिसनर्स हम बहुत ही कम लेने वाले हैं, लेकिन आपके मैसेजेस मैं ऑफकोर्स पढ़ूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। और एक चीज, हमें फिरोज सिकन पुरिया जी ने कहा था कि उन्होंने आखिरी खत हमारे आरजे को भेजा था, आरजे बॉस को, और वो हमेशा जुड़े रहे, तो फिर अब आपने क्यों बंद कर दिया खत भेजना? मुझे भी कोई खत भेजे, लव लेटर तो अभी मिलने से रहा हमें इस उम्र में, लेकिन हाँ, आप लोगों के लेटर का इंतजार जरूर रहेगा। तो अगर आपको मन करे तो, मैं वैसे कोई ऐसे लालच नहीं है, पर अगर आप भेजना चाहें तो मैं मना बिल्कुल तो नहीं करने वाली, तो समझ रहे ना इशारा। वेल, इसी के साथ आपको अगला गाना सुनाती हूँ और उस गाने के पीछे की कहानी भी, मतलब गाने की नहीं, हमारे लिसनर की कहानी, और जिन्होंने ये गाना रिक्वेस्ट किया है लता मंगेशकर जी की आवाज में, घर फिल्म से, कुछ ही देर में।

7:34 ऑन द क्लॉक और ये गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में आपने सुना फ्रॉम द फिल्म घर. और इस गाने के साथ संजय दर्शन जी ने हमें एक और कहानी बताई. वेल, ये कहानी इस गाने से नहीं, लेकिन हाँ, अब तक मुझे लगता था संजय दर्शन यानी कि दर्शन इनका लास्ट नेम होगा, पर एक्चुअली में इनके वाइफ का नाम है वो जी दर्शना. संजय दर्शना से दर्शन, क्या बात है. और खत की अगर बात करें तो ये भी बड़ा प्यारा सा किस्सा है इनका, जहाँ पर ये कहते हैं कि ये अपनी वाइफ को लेटर पैड होता था जहाँ पर ए से जेड तक हर एक पेज पर आप लिख सकते हैं जर्नल टाइप. तो इन्होंने ए से लेकर एच तक सभी खत पे लिख दिए बातें अपनी. और फिर क्या, फिर शादी हुई. और कॉन्टेक्स्ट तो उनकी वाइफ ने समझा नहीं, लेकिन हाँ, इसके बाद उनका घर परिवार फूला फला. लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने एक चीज़ उनसे पूछी कि एच के बाद आपने लिखना शुरू फिर से किया या नहीं, तो जवाब आया भाई सोशल मीडिया पर हम लिखते हैं. तो अब इस सोशल मीडिया से निकलकर क्यों ना संजय जी दोबारा से लिखने की कोशिश की जाए. क्या है कि आखिरकार आपकी वाइफ को दोबारा से वो यादें ताज़ा करने दीजिए. और हाँ, इस बार जेड तक ज़रूर पहुँचिएगा. और अगर पहुँच जाए जेड तक आपकी कहानी, तो पिक्चर ज़रूर भेजिएगा जेड के आखिरी पन्ने की. और उसके बाद एक और किताब ले लीजिएगा जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी अपनी वाइफ के साथ अपने परिवार के साथ जो भी खुशी गम जितनी भी चीज़ें बांटते हैं उन्हें लिखिएगा ज़रूर. क्योंकि एक वक्त जब ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर आता है जब हम पीछे मुड़कर मुस्कुराना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, और वो लिखावट हमारी जो शायद हम कभी भूल जाएं, लेकिन वो यादें उस लिखावट के ज़रिए ज़रूर ताज़ा होती हैं. और देखिएगा, धीरे धीरे लिखते लिखते आपको खुद एहसास होगा कि जिस तरह इंसान आगे बदलता जाता है उसकी लिखावट भी उसी की तरह नया रंग लेती है, नया मोड़ लेती है. वेल, इसी के साथ आपको अगला गाना सुनाती हूँ. ये दीपा पालकर जी की रिक्वेस्ट आई है, हमारी थर्ड लिसनर, जिनकी रिक्वेस्ट है खुदाया खैर गाना. लेकिन खुदाया खैर करे कि इन्होंने भी खत लिखा अपनी दोस्त को जो गोवा में रहती थी. और एक साल पहले की बात है जब उनके दोस्त का जन्मदिन था. और फिर क्या, बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड के साथ साथ लेटर भी लिखा. और होना क्या था, ऑफकोर्स लेटर आपको मिले तो आप ज़रूर खुश हो जाएंगे. आज के ज़माने में लेटर की कीमत हमसे पूछिए जनाब, जहाँ पर आप मैसेज करके हर चीज़ बता दें. लेकिन अगर कोई लेटर लिखे ना तो ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत हमारे लिए. वेल, पहले कितनी आम बात होती थी, लेकिन अब यही चीज़ सौगात बन चुकी है. तो ये सौगात आपने लास्ट किसके लिए दी थी, या फिर नहीं तो किसे देना चाहते हैं, ये बताइए ज़रूर. कॉल कीजिए, अभी भी बहुत वक्त बाकी है, आपकी बारी शायद अगली बार आ जाए.

743 ऑन द क्लॉक और चलिए आपकी रिक्वेस्ट जो है अब थोड़ी कम करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं तो उनको हम कैसे इंक्लूड ना करें। हमारे पास मैसेज आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहाव ये कैसे बोलूं मैं, ये आपके सरनेम जो आपने एक तो हमारे देश में ना ये जो विभिन्नता है इसमें जो सरनेम्स आते हैं कुछ कुछ ना टंग ट्विस्टर लगते हैं और काफ़ी कमाल के पहली बार सुने सुने लग रहे हैं, पर ठीक है आई विल ट्राई। नवहावकर, माफ़ कीजिए अगर मैंने गलत किया बोला है तो मुझे करेक्शन ज़रूर बताइएगा, इंसान गलतियों से सीखता है ना, गलतियों से सीखूंगी मैं, आप बताइए। वेल निर्मला जी, विशाल सोपान ताइड़े हमें सुन रहे हैं, सुनील पांचाल हमें सुन रहे हैं नाला सोपारा से, अजय

0: आखरे इंदौर से दीपा पालकर जी, दिग्दर्शन और कविता जी, आप मेरठ कैंसर में सुन रहे हैं, आप कॉल भी कर लीजिए, आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ मैं। आखिर आपसे बातचीत हो रही है लेकिन आवाज नहीं सुनी मैंने। फिर हमारे साथ जुड़े हीरामणि वर्मा जी, जिनके साथ हीरामणि वर्मा जी के साथ पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, काफी इंटरेस्टिंग नाम है वैसे। एंड वी ऑल्सो हैव महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी हमें सुन रहे हैं, एंड लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। वी ऑल्सो हैव बालकरण वर्मा जो हमें सुन रहे हैं। कहाँ से आप सुन रहे हैं हमें, आप जगह का नाम बताइए, हम जानना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ से, ओहो। और अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद भरत वर्मा, बंटी बबली वर्मा, रजनीकांत पाटिल वाधवन जी, अशोक पाटिल वराली, मुकुंद कुलकर्णी जी आ चुके हैं, काफी लेट नहीं हो गए मुकुंद जी वैसे, पूना से हमें सुन रहे हैं। राजेंद्र परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, काफी प्यारी बातें करते हैं ये। शुभदा जी, आप ट्राई करते रहिए शुभदा जी, हमें यकीन है आपकी बात हमारे साथ जरूर होगी। जैसे फिरोज सिगनपुरिया जी की फाइनली हमसे बात हुई है, आपसे भी हमारी बात जरूर होगी। एंड वी हैव प्रदीप अनंत कृष्णन जी, कुछ लिसनर्स हमें इतने वक्त के बाद मिलते हैं कि मुझे उन्हें ना ऐसा लगता है डांट लगा दूं थोड़ी, कहां थे आप इतने टाइम तक, पता है कितना मिस करती हूं मैं आप लोगों को। वेल, हमारे साथ शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली भी हैं जुड़े हुए, एंड झारखंड से हमें सुन रहे हैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा। फिरोज सिगनपुरिया जी, इब्राहिम जी आपका मैसेज अब तक पहुंच नहीं रहा है, सिस्टम ग्लिच आई गेस। हितेंद्र दास असम से, एंड वी हैव संजय पाटिल, कल्पना राजू उल्लासनगर, चंद्रकांत रोड़े नांदेड़ से, संजय दर्शन जी, एंड वी ऑल्सो हैव बैंड्रा वेस्ट से नाइजल पेरी, वो नाइस। एंड वी ऑल्सो हैव विजेंद्र घाटोल अकोला से, धीरज चौहान, काफी टाइम के बाद हुई मुलाकात, प्रणव शिंदे जी, पंकज माहौड, वैदेही जी, एंड 36765 जी, आपके मैसेज पहुंच नहीं रहे तो आपका नाम और कहां से सुन रहे हैं ये जरूर हमें मैसेज कीजिएगा। जैसे ही मिलता है आपका पता, यानी कि आप कहां से सुन रहे हैं, आपके बारे में हम जरूर मुलाकात और बातचीत करेंगे। विद दैट, आपको अगला गाना सुनाती हूं और इसके पीछे की कहानी गाने के उस पार।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

वेल, प्यार तो जन्मों का है ही, और आज प्यार की बात की थी मैंने वैसे लव यू जिंदगी पर, और इजहार देखिए आज बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों के बीच, यानी कि एक रिक्वेस्ट और आई है हमारे पास। वैसे ये आज की फाइनल रिक्वेस्ट है जी, क्योंकि फ़ोन लाइंस हमारी बंद होने वाली हैं, तो उम्मीद है, आई नो आप लोग ने बहुत कोशिश की है और मैं जानती हूँ लगातार बैक टू बैक कॉल्स किए हैं, लेकिन जो हमारी लास्ट कॉल थी ना कल्पना जी, उल्लास नगर से हमें कॉल कर रही थी, तो पहली बार कल्पना जी की बात मुझसे फ़ोन पर हुई। तो यकीन मानिए अगर कल्पना जी का कॉल लग सकता है तो आपका भी कॉल ज़रूर लगेगा, बस उम्मीद नहीं हारनी, कोशिश करते रहनी है, कभी ना कभी तो ज़रूर बात बनेगी ही, लेकिन आप कितनी देर तक कोशिश करते हैं ये ज़रूरी है। और वैसे भी हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, हमारा रिक्वेस्ट आर जो है वो सुबह यानी दोपहर को भी आता है, यानी कि हिट एंड हॉट और फिर हम तुम, तो इस बार ना सही अगले बार ज़रूर, और हर बार एक ना एक नए लिसनर तो ज़रूर आते हैं और उनकी कहानियाँ भी तो हैं, जैसे कि ये कहानी लता मंगेशकर जी की आवाज़ में जो आपने अभी गाना सुना साजन मेरा उस पार है, ये रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी मीना जी की तरफ से, जिनके साजन उस पार है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको लास्ट लेटर आपने कब लिखा, तो कहते हैं मैं लेटर नहीं लिख रही थी, मुझे लेटर मिला है उनके साजन की तरफ से। मतलब कमाल की बात है, यानी कि उनके साजन जो अमेरिका में हैं उन्हें लेटर लिखते हैं, आज भी इसी साल की बात है। एंड आई वॉज सो सरप्राइज, इतनी प्यारी बात है ये कि आज के टाइम पर जो इतनी इजीली आप व्हाट्स मैसेजेस कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू आप बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर आप फिर भी खत लिखें, तो बताइए ये प्यार है कि नहीं गहरा। और जब मैंने इनसे पूछा कि आपके हस्बैंड का नाम बताइए, तो कहती हैं कि नाम नहीं ले सकती, काफ़ी लोग हैं आसपास। आय हाय कितनी प्यारी बात है ये। वेल, इनकी शर्माने के अदाओं के साथ साथ मैंने एक सवाल तो पूछ ही लिया कि लास्ट नेम बता दीजिए, तो मिस्टर कपाड़िया हैं इनके हस्बैंड, मिस्टर कपाड़िया इन्हें खत लिखते हैं अभी भी, बताइए हुई ना प्यार भरी बातें। और इसके बाद एक और चिट्ठी तो ना सही, लेकिन हाँ अगला गाना जो आप सुनेंगे ये भी कल्पना जी ने उल्लासनगर से राजू जी के लिए रिक्वेस्ट की है। वेल, इनके हस्बैंड, वेल इसी के साथ इनके अगर कहानी की बात की जाए खतों की, तो 40 साल पहले इन्होंने अपनी बुआ को खत लिखा था, और इस बार आप किसे खत लिखने वाले हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा, बताना क्या है, आप खत लिख दीजिए, मैं तो कह रही हूँ इंतज़ार किस बात का।

0: विद दैट चलिए आपको अगला गाना सुनाने वाली हूँ, जो कि होगी लास्ट रिक्वेस्ट और उसके बाद मेरे जाने का वक्त। लेकिन मिलेंगे सिर्फ यहीं FM रेनबो 107.1 पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।
0: ओहो, जाने से पहले एक और चीज बता दूं आपको, हमारे साथ काफी नए लिसनर्स जुड़े हैं। प्रदीप अनंत कृष्ण जी ट्राई कर रहे हैं कॉल लगाने के लिए, पंकज मोहर जी, विजेंद्र घाटोल जी, एंड ये सभी लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं ली क्योंकि वो दूसरे लोगों को मौका देना चाहते थे। राजशेखर बंदगर सोलापुर महाराष्ट्र से हमें सुन रहे हैं और राजकुमार गुजरात से, चेतन कुमार जुड़ चुके हैं, लेकिन काफ़ी लेट नहीं हो गए चेतन जी आज आप? आपका मैसेज तो पहले आ जाता था। फिर एंड विद दैट चलिए हमारे लिसनर्स जिनसे हमारी बात नहीं हो पाई है दोबारा मिलेंगे चलते चलते।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: अरोड़ा के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नविपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमरीकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति JD Vance की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties that have got licenses.
4: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जन सेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
5: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
6: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम

0: के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
2: सेमीकंडक्टर जर्नी,
3: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
2: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
1: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
5: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
4: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek.

and I need hope and inspiration. You're always strong when I

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मधुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे।

0: दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आंख में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। रान इंदौरी साहब की कुछ लाइन्स है और सही बात भी है। देखिए, अगर एक ही वजह रहेगी ना जीने की, तो कहीं ना कहीं जब वो वजह आपके पास से चली जाएगी या कहीं गुम हो जाएगी तो आप तन्हा रह जाएंगे। बेहतर ये है कि खुश रहने के बहुत सारे तरीके अपने पास रखें। यही जिंदगी का असल फलसफा है ना। प्रोग्राम चल रहा रंगे महफिल, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी फिल्म रेनबो पर।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले

सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रह गई तो फिर ये जवानी फिर कहाँ।

बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

तुम मुखातिब भी हो और करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो और करीब भी हो। अब मसला ये है,

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिल जा जाने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है।

12 बजते हैं, आइए आप सुनते हैं एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गईं। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर एसआईआर प्रक्रिया से कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनबाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाण पत्र कार्यक्रम पर अमेरिकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबर कर दी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 2:12 और 26 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं जीरो आर शो प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ। फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

इस खूबसूरत गीत को आवाज़ दी थी किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठा ने, और जैसा कि हमने बताया था फिल्म का नाम था आग ले लग जा। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, फिल्म का नाम है जवानी दीवानी।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हम किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये हम अपनी बात नहीं कर रहे बल्कि उस फिल्म की बात कर रहे हैं जिसका गीत अब आप सुनेंगे। आवाजें हैं किश मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठा की।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए अब सुनते हैं अभिमान फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: बारह बजकर 34 मिनट और 28 सेकंड हुए हैं। जीरो आर शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे गाया है किशोर कुमार ने, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। इस खूबसूरत गीत को अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। और अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने, फिल्म का नाम है ज़माने को दिखाना है।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

और दोस्तों जीरो आर शो के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाजों में फिल्म श्रद्धांजलि का ये गीत।

एक बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमेरिकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबर करेगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 1:22 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप म्यूजिक। और इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आय हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

नए तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

दो बजे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमेरिकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबर करके। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 2:22 और 22 सेकंड हुए हैं। आप पेश है कार्यक्रम भुलाए ना बने। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया और इस कार्यक्रम में भी आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

3 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं समाचार। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द करेगी। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमेरिका फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 3:40 हुए हैं। पेश है मिडनाइट मेलोडीज, इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी है। महाले के पावन अवसर पर प्रस्तुत है देवी आराधन का विशेष सांगीतिक कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी। लेखक बानी कुमार, वाचन और श्लोक पठन बीरेंद्र कृष्ण भद्रो, संगीत संयोजन पंकज कुमार मल्लिक।

तुम्हें त्रिगुणात्तिका तुम्हें रजोगुणे ब्रह्मार गृहिणी बागदेवी सत्वगुणे विष्णुर पत्नी लक्ष्मी तमोगुणे शिवेर वनिता पार्वती अमार त्रिगुणातीत तुरी अवस्थाय तुम्हें अनिर्वचनीया अपार।

काशिनी निरुपमा भगवती के स्तव मंत्रे कल्याण उद्बोधित भगवती विष्णु निद्रा रूपा महारात्रि जो

वंश्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमशरी नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानि चर्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं धारित्री त्वं देवी जननी परा त्वैव धार्यते सर्वं तवैतत्सृज्यते जगत् तवैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सकृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्वञ्च सर्वस्य गुणत्र विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि भोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री स्वविश्वरी त्वं ह्री स्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि स्वं शान्ति इक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भूषुणी परिघायुधा सौम्य सौम्यतराशेष सौम्यद्वस्वति सुन्दरी।

नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम स्वीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया तवैतदप्या यथे कृष्णम् अलङ्घ्य वीर्ये शक्तिर अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया।

यैतत् कापि स्तुति सद्य परापरोक्तिः स्वर्गभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी वंसूता सुतये कावा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य निधि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भ शरीके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूल चंद्राही धरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूर कुक्कुटवृते महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंखचक्र गदाशारं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतग्र महाचक्रे दंश्रधृतव सुंदरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंह रूपेण उग्रेण हद्दु दैत्यानिकृतोद्यमे त्रैलक्य प्राण सहिते नारायणी नमस्तुते कीरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दंशाकराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मूर्णवधने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मिधे सरस्वती वरे भूतिवभ्रवितामसी नियते त्वंग्रसी देशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्योस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्य कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषासूरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वरेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो अनसुतानिव असुरासृग्वसापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शूहाय खड्गो भवतु चण्डिके वाङ्नथा वयं भोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टा त्वामश्रितानां न विपन्नराणां त्वामश्रिता झाश्रयथां गृहान्ति एतत्कृतं यत् कदलं तयाद्य धर्मदिशा देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्ति कृताम्बिके तत्प्रकरति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या मम तगत्ते अतीवान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वं रक्ष्यांसि यत्रोग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलादि यत्र धावानलो यत्र तदाब्धिबद्धे तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारसीति विश्वं विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तैः भक्तिनम्रा
देवी प्रसीद परिपालय नोरिधीतेर नित्यं यथा असुरवधाद दुनैव जेत्या पापानि सर्वजगतांच समग्नयाशु उत्पात पाक जनितांश महोपसर्गान् प्रणतालं प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिना विद्ये लोकान्।